0: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
1: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
2: गाओ ना बेटी, गाओ
1: गाओ।